0: 사쿠라 퍼스트비전 우정우 라디오 네트워크 कृषिमन्त्री नाग सिंह
1: मध्य पहाड़मा भण्डारण गरिएका आलुमा रोग लाग्न नदिन जनकदेव बिजिरे कार्डिनल खुमल सेतो एक खुमल लक्ष्मी खुमल उज्जवल खुमल उपहार खुमल विकास मध्ये उपलब्ध जातका स्वस्थ आलु छनौट गरौं। आलु शीत भण्डारबाट निकालेर उज्यालो ठाउँमा सिजाई हरियो पिसा आएपछि मात्र रोपौं।
2: राप्ती इंजीनियरिंग कॉलेज घोराही दांग को विद्यार्थी भर्ना संबंधी सूचना
1: स्थापना को पहिलो बैच में इंजीनियरिंग कार्यक्रम तर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ पांचों बैच में गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल ग्रीनविच विश्वविद्यालय लंदन कॉलेज लीडर्स नेपाल द्वारा सम्मानित र नेपाल एजुकेशन अवार्ड जापान अस्ट्रेलिया तथा यूएई द्वारा पुरस्कृत लुम्बिनी प्रदेश के उत्कृष्ट इस कॉलेज में बीबीए बीसीए बीई कंप्यूटर र बीएस सिविल कार्यक्रम में सीट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला।
2: सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ
1: फोन नम्बर 082-582-601 98-578-3590 98-578-3184 तीन वर्ष डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र 18 महिने अमिन कार्यक्रममा केही सीट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला।

0: तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: डिजिटल कलर तथा ज्वालामय अफसेट सोलू दुर्गुम नगर पालिका 5 सोलू।

0: 都看都看，等到他的眼神发力，我怕白你就一来空的才能把你。
1: यू चार पर्व में यूरो पेंट्स प्रस्तुत करता है रंगीन चक्कर बरसीन से उपहार रु 50,000 को यूरो पेंट्स को खरीद पाओ उस लकी ड्रॉ कूपन अपनी पाओ उस 3% एसी एक साल डबल डोर फ्री इंडक्शन चूलो राइस कुकर वॉल चॉक अपनी बम्पर प्राइस में पाओ उस एक जोड़ी को लाड़ी बाली टू यूरो पेंट्स घर मात रही ना रंगाउन उस सपना बनी
2: महालेखा परीक्षक को कार्यालय को अनुरोध महालेखा परीक्षक को कार्यालय को स्वीकृत लेखा परीक्षण नीति तथा कार्यतालिका अनुसार आर्थिक वर्ष 2082-83 को आर्थिक कारोबार को लेखा परीक्षण गर्न प्रथम चरण में 44 जिल्ला का संघ प्रदेश र स्थानीय तह का कार्यालय में लेखा परीक्षण टोली खटाइएको छ। लेखा परीक्षण में सघाउ पुग्ने आर्थिक काम कार्यवाही को सूचना तथा जानकारी एवं लेखा परीक्षण टोली को कार्य सम्पादन का सन्दर्भ में कुनै सुझाव तथा गुनासो भएमा कार्यालय को टोल फ्री नम्बर 18-1050-0061 मा रेकर्ड गराउनु हुन वा gunaso@oagnep.gov.np मा इमेल गरिदिनु हुन अनुरोध छ। प्रथम चरणमा लेखा परीक्षण हुने जिल्लाको विवरण कार्यालयको वेबसाइट oag.gov.np मा प्रकाशन गरिएको छ।

0: सूची जिला अस्पताल भावी सलरी सूची
1: जापानी भाषा पढ़ने जापान जाऊ दीदी गांव में जापानीज भाषा पढ़ाई नए
0: खोजते हिड़े संसार भेटिशरी बुरु कुन ठाव्रो पढ़ाई चाहिए मैं बताइ हाई
1: मेरे तनाव चाहिए यही हो जापान जान कुन इंस्टिट्यूट में राम पढ़ाई होनी के प्रोसेस कर तनाव में छो
0: अब चिंता नमा का ओरियन बिजनेस ग्लोबल इंस्टिट्यूट सावन चीफ में जापानी संस्था पढ़ने अनि जापान जान
1: इंस्टिट्यूट में क्यों पढ़ने तो अरुण छेन तो पढ़ने ठा
0: ओरियन बिजनेस ग्लोबल इंस्टिट्यूट में अरु को भाग छुट्टी विशेष जापान उच्च शिक्षा हासिल करेगा तथा जापानी शिक्षक भाषा कक्षा पढ़ाने के साथ ही साप्ताहिक नियमित टेस्ट कक्षा छुट्टी में एक्सेप्ट करने बिना झंझट जापान जाना प्रशिक्षण समेत इसका साथ ही कम मार्क्स लिया वा कम सीपी लिया बैकलॉग पास भैया जापान में पढ़ना जाना अप्लाई करने जापान को टोक्यो ओसाका नागोया फुकुओका लगायत का शहर में जाने सुविधा उपलब्ध
1: सब कुरा का सुविधा तो था दीदी कक्षा संचालन में कति खेल
0: सुनाकांक्षा इस इंस्टिट्यूट में जापानीज भाषा कक्षा बिहान 6 बजे देखि बेलुकी 5 बजे सम्म नियमित भईर आपू चीज सुरक्षित करी हाल
1: दीदी मैं ओरियन बिजनेस ग्लोबल इंस्टिट्यूट में हजुर सबैको विश्वासी र भरपर्दो जापानीज भाषा पढ़ाने इंस्टिट्यूट ओरियन बिजनेस ग्लोबल इंस्टिट्यूट चाँडै केएल टावर छैटौतमा काठमाडौँ सम्पर्क
0: 9850 17979
1: र 01-592-2616 वेबसाइट www.obgi.edu.np ओरियन बिजनेस ग्लोबल इंस्टिट्यूट ओबीजीआई एजुकेशन कंसल्टेंसी नेपाल चारहन चुच्चेपाटी काठमाडौँ।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटर सकल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्रमा।
2: का विशेषता
3: जापानीज ऊर्जा प्रणाली उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
3: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया भर्सन बजारमा लन्च भइरहेको
3: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओखलढुंगा र खोटाङको डिक्चल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटरहरू कम्पनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
3: एक्सपेंस गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
2: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
3: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाङ ओखलढुंगा।
2: संपर्क नंबर 0375902222 9852288022 र 9842803000।

0: रेडियो एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: Sound check. Sony FM. Studio time.
2: It's 3 PM. New support 3 PM.
3: Time check को साथ में New Star Digital Color Lab तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोनू दूध को नगर पालिका 500 खुम्बू
4: Wherever you are, stay connected with the wider world with the BBC World Service. Now streaming on Zeno.com.

0: मोनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: संचय सोनी एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 4 पीएम अपराह्नको 4 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुखुम्बु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म एक्सप्लोर हाम्रो प्रतिबद्धता पेट्रोलियम पदार्थमा शुद्धता यहाँबाट डिजल र पेट्रोल तपाईँले भनेकै समयमा तुरन्त उपलब्ध छ। सम्पर्क व्यक्ति परशुराम तामाङ 9847-87-35-19 समुद्र साक्य 9861-83-35-34 टेलिफोन 0385-20-43 नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर प्रोपाइटर तोरण कुमार श्रेष्ठ 9862-83-87 नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सँगै न्यू आई सो मोटर पार्ट्स एण्ड सप्लायर्समा सम्पूर्ण गाड़ी मरमत सम्बन्धी सेवा उपलब्ध छ। यहाँ साना तथा ठूला जुनसुकै गाड़ी मरमत गरिन्छ। सम्पर्क रमिला श्रेष्ठ 9862-93-06-46 नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 7 गारमा जोरबौद सुलुखुम्बु।

0: तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Studio time.
0: It's 7 p.m.
4: टाइम चेकको साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुखुम्बु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु